0: menemani warga di happy weekendnya warga. Ana berterima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ana langsung saja pamit undur. Have nice weekend. Wassalamualaikum. Firmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओह माय गॉड, मेरी तो अभी तक की क्लास है.
2: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है. मैं चांदी आला करिश्मा कपूर. अच्छा मैं गंदा आला शाहरुख खान. अच्छा अच्छा
1: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सोना सोना सोना.